0: নয় দশমা পাহা অনুত নয় দশমা হাতা লাখান্ড রেডিও ITN সেভে শ্রীলঙ্কিয়া হান্ড
1: ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉദ്യ ദഹായ വിനാടി തുണായി